0: 지저 장게 친구도게 라 에리 규크베로데 나츠 능창메 가가주주 잔랴 김슈비 사가디나지 칼라디토아 톤도니니데기
1: 사가규르메네 셈비규샤 타리이나 나카도 교베 어릴로 규르바 기라니라 발라르 셉추슈르쇼 니에셈나라 기라니르 제스턴비
2: 마리 주저 샹게 계지 켜는 셰싱미도 니에 주저게 사가디 칼라르 가바치그리스규 텐 어레조야 고르셰제 가르칭아
0: 랑게지 셰 케비유다 랑게 가오베 차와슈다
1: 랑페페게 나 유레 잡도 쓰고 오시 ये दिन जी मेल भी ताजू उन्हें वो लोग चासो आज जो इन्हें चंदा में भी जब चुंग जाता है सुसु हिम जाते शादा ता सोम तो बा तो तो सोचा किसी चीज़ के तमते किरानी लेते आज जो दूर रहता गेंके रोचे जुगुर शा जेमाने सोचा तो ताकर यूने किरानी किसे भी मतो आलम बो
2: Chuchoran malab sirwe ah. Mishine susu chepchung re sinye yorwe. Dindra nga mutu meta. Chungdu ne tabar, Chuchoran mebi ina, nga da su min yu, gyuncha meba netu urwe.
0: Chuchoran tu namya su zang bobri la. Namya nye chucho yi.
2: Nye chucho yi, nye chucho rwa.
0: Nga zu lo khadzu le ne zha, ni zu khadzu tu ne zha. Rangge sheba nye nye ya yi.
2: Ngai nye yi, ngai khali nye yi.
1: 然后你对马前的媳妇都会啊虽然对其他我给你跑不吐气的我我都气的我就给你们家接送上已经想不起我谁明月给拿了两个菜肉先没睡接着压死了不得嗯可我压死了过也没多看到你也住不吐的住不吐气下雨
0: Dene susu bezu chi me rale yori.
2: Ra, rangi xiedan la a. Mishi xe ne rangi qiwa sangu shubri. Yine rangi nye chinsu na sengbudo, yuksha na sengbudo a. Dindze xe nye yorbe.
0: Susu kuzu te yo marba, rang chinsu mi nye dindze
2: zbe. Ya su mi yu.
1: Wei wei wei, da jisu. Kirani tan tochung du neng si rixia. A, kala se ba le khabzu gyabzi. Ta kirani khabzu mo gyaba, kala se ni yongdui. Ta xe ma shi, gyoz kala su. Inda.
2: Yeah, 주저. 체드 주저라서.